बड़ा गोल है पर कोई औलाद नहीं। हर रोज सतगुरां दे अगे तरली करदा है, सतगुरु तू सब दी झोली भरदा है, मेरी भी झोली भर। असत संगियो जंग मंगियाणी दी गल है, पाकिस्तान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए, इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार विच तकिया है।

दिन अपने बाप नू तके मार के बाहर कट देता है। तू मेरा प्यो नहीं, तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोल दी है। एडिया एडिया उच्चिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने, ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी, एक प्रसादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सरवाले अज इस नगरी विच आए। बाबा जी दी सोभा सुनी ते दीवान लगा होया है। समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़ियां भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडियां मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कढ़ दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है। जदों अपनी मां नू बच्चे माड़े बोल बोलते ने, ते मेरे तो सुनिया नहीं जाता। किड़ा गुनाह कीता है, किड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे हुए सेठ ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों, ते खुशियां किहदे नाल मनाईयां सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया सी? शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा, उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाएंगी, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगियां। तू गुरु नानक नू भुला दिता। बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देण वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे, सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गए। कदी गुरुद्वारे चक्कर मारिया है, कदी संगत विच गया है, दुख वेले किड़े गेड़े मारदा सी। हंजू केरे, बाबा जी मैनू बख्श देवो। ते बाबा जी ने सारी संगत नू बिने कीती भी सारे रल के अरदास करो, इस सेठ दी झोली सुख पै जान। ते संगत अरदास कर देवे, क्यों ना खुशियां आ जान। सेवका नू भेज के इस दे पुत्र ते नूह नू भी बुलाया। बाबा जी ने किन्ना चिर इन्हां नू सिख्या दित्ती। आखण लगे, बच्चिओ मां ते प्यो रब रूप होंदे ने। जेड़े माता पिता दी सेवा नहीं करदे, उन्हां नाल रब रुस जांदा है। तू अज अपने बापू नू धक्के मारदा है, ते कल नू तेरे पुत्र तेनू धक्के मारनगे। इंज चंगा नहीं, बाप दी सेवा करया कर। बाबा जी बचन कर देन ते कौन मोड़ सकदा है। सत्संगियो, परी संगत दे विच अपने बापू दे चरण पकड़ ले। नहीं बे, देन वाले नू कदे नहीं पलाना। सब कुछ उसदा दिता होया है, सारियां रहमतां उसदियां दित्तियां होईयां ने, ते साडा किड़ा चंद्रा सवा है। आपां जांदे हां ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी, ते नमस्कार करन वास्ते जदों अपना पर्स कढ़दे हां, सब तों पहलां तकदे हां भई फटिया नोट केड़ा है। जे फटिया नहीं ते सब तों छोटा नोट केड़ा है। बेशक गुरु साडे पैसे दा भुखा नहीं, पर गुरमुखा ओ प्यार दा भुखा है। तेरा किहो जिहा प्यार है, गुरु लई छोटे ते फटे नोट टोलदा है। नहीं बई, सारा कुछ उसदा दिता होया है। कदों खुशियां आउणियां ने, जदों सचमुच ही अंदरों

मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता कोय न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहि ठाकुर। काही मन भउ करिया ऊड़े ऊड़ आवै सै कोसा तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खुलावै कवन चुगावै मन मह।

जब निकाल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जब निकाल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो।

भये सर से पूरे गुरुते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे

0: संगत जी इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान कर ली। आओ अगला प्रोग्राम इस दरगे सत्कारयोग मैनेजर साहब जी, सत्कारयोग मेरे वीर प्रतपाल सिंह जी, वो आप जी प्रोग्राम की जानकारी देंगे। बड़े प्यार सहित आप जी श्रवण करो जी, भुला ना चेतारते हुए शीश बख्शो, गुरु फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की
1: फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप संगतान को सतगुरां दे पावन पवित्र गुरबाणी का कीर्तन सरवण करा सत्कारयोग गुरु घर का हजूरी रागी जत्था भाई साहब भाई प्रेम सिंह जी समुचे जत्थे का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण बेनती करदे हां बहुत ही सत्कारयोग पंथ के महान विद्वान सत्कारयोग ढाडी जत्था ज्ञानी निर्मल सिंह जी नूर, वो आप संगतान को ढाडी वारा गुरु त्याग सरवण करवाएंगे जी। आओ बड़े प्यार सत्कार के नाल सरवण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: वाहेगुरु वाहेगुरु
3: धन्य महाराज धन्य। बड़ा प्रेम सिंह

0: सतगुर घुट छाती नाल लाया बख्शी तीन लोक दी माया
1: सतगुर घुट छाती नाल लाया बख्शी तीन लोक दी माया
0: सतगुर घुट छाती नाल लाया बख्शी तीन लोक दी माया
1: सतगुर घुट छाती नाल लाया बख्शी तीन लोक दी माया
0: मंजी दे प्रचार कराया मंजी दे प्रचार

0: फते।
1: तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी राज, मात पिता हम बारिक देर, तुमरी कृपा में सुख कने, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊँचे ते ऊँचा भगवंत सगल।

काम क्रोध नगर पहु परया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लियो मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रसाद न जानिया तन अंतर हो मैं कंडा हे जूं जूं चले चुबे दुख पाव है जम काल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पहु खंडा है अविनाशी प्रभु पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख बड बड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है।

जित नाम हृदय निवास सुर नर गण गंधर्व छे दर्श दर्शन आसास पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़।

कत उच्चरे अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल्य जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक।

बिथप्पे सुख लेते नर संसार में अभय पट रिप मत ते सकियत ते न जल अपने गुर अमरदास सुप्रसन्न जय सुख लेते नर संसार में

0: चाचरी छंद ना सतरे ना मित्रे ना परमंग ना पितरे ना चित्रे ना मित्रे परे है पवित्र
1: छंद।

0: सर्व अनुराग है,
1: त्रिपुक्त स्वरूप है, अछिज है, अछूत है,
0: नर कंपनास है, प्रीति और प्रवास है,
1: निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है,
0: विभक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है,
1: निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है,
0: अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त।

अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना। कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले, करता तेरा सब किस है जिसे विश पावे। नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे।

0: सबत लाग सवारिया
1: कहे नानक लेवे बाजू क्या करे बेचारिया
0: अनंत सबको के अनंत गुरु ते जानिया
1: जानिया अनंत सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया
0: कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया
1: अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका सब सच्चे सवारिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे
0: का सो जन दे जिसनो होर क्या करे वे

0: सबूना पेटन पावै
1: और की बात कहाँ कह तो सो पेटे ही के पट बीच बचावै
0: जश पियंग सुदा नव देव पेव तुमे सभी कर त्यावै
1: आकाश पताल सातल जच पुचंग सबे सन्यावै
0: पाए सके नी पार प्रभाहु को नेति नेते भेद बतावै
1: और थके सभी खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवै
0: नार से चतुरानन से रुमनारिक से सबहु मिल गायो
1: भेद कतेव न भेद लख्यो सब हार परे न
0: आए सके नी पार उमापद सिद्ध स्नास।

0: बसंत की बार महल पंजमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय के हो हरिया पाई
1: करम लिखन ते पाई रुत सुहाई
0: मंत्रिण त्रिपवन मौल्या अमृत फल पाई
1: दिन साधु सुख उपजे लती सब छाई
0: नानक सिमरे एक नाम फिर बौर न ताई
2: पंजे बंदे महामरी कर सच्चा टोआ
0: चंज पायन विच देव खड़ोआ
2: रोग शोक सब

0: मरो तो साच पति जय
1: संत साई सदा जग माए कृपा कर श्यामे वरदी जय
0: सैया दे शिवा वर मोहे है शुभ कर्मन ते कबू ना डरो
1: ना डरो सो जब जाए डरो निश्चय कर अपनी जीत करो
0: सिखो अपने ही मन को ए लाल जोगन तो उचरो
1: जब आपकी निदान बने तीरन में तब जूझ मरो
0: तन जियो तह को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचार
1: है।

तुम प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। मैं क्या मांगौ किछ थिर न रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। ददा दाता एक है सब को देवनहार, दिन दे तोट न आवई, अगणत परे भंडार। दिन दे तोट न आवई,

जप तप संयम धर्म नांक माया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परी की

तुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद रख लय हर जियो हर नाख समार पचाया